पौड़ी आपे ही करना क्यों कलापे ही तय तारी है। देखे किता अपना तर कच्ची पक्की सारी है। जो आया सो चल सी सब कोई आई वारी है। जिसके जी प्राण है क्यों सहे मन विसारी है। अपना थी अपना।

पौड़ी चाकर लगे चाकरी चले खसमे पाए, हुरमत सुनो अगलियो बजो पेदूना खाए, खसमे कर बराबरी फिर गैर तंद्र पाए, बजो गवाए अगला मोए मोए पाना खाए, जिसका दिता खावना तिस कहिया साबास, नानक हुकम ना चले नाल खसम चले अर

पौड़ी नानक अंतन जपनी हता के पारावार, आप कराए साखती फिर आप कराए मार, इक ना गली जंजीरियां तुर ही चरे बिसार, आप कराए करे आप हों कैसियों करी पुकार, नानक करना जिन किया

0: गए मसकत काल, नानक ते मुख अजले चेती छुट्टी नाल। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह।
1: बोलो जी वाहे गुरु। एक ओंकार वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय। वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवें। प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई ते आए। फिर अंगद गुरते अमरदास रामदास हुई सहाय। अर्जन हर गोबिंद नो सिमराव श्री हर राय। श्री हर कृष्ण ते आइया जिस डिठे सब दुख जाए। तेग बहादुर सिमरै घर नौ निधि आवै ताए। सब थाई हो सहाय। दसवें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी सब थाई हो सहाय। दसां पातशाहियां दी जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे

ताप गया प्रव्याप मिटाया, जन की लाज रखाई। साध संगत ते सब फल पाए, सतगुर कै बल जाई। हालत पालत प्रभ दोवै सवारे, हमरा गुण अब गुण ना विचारिया। अटल बचन नानक गुर तेरा, सफल कर मस्तक तारे। हालत पालत प्रभ दोवै सवारे,

0: त्यागै बिनवता।
1: भवन गुरु पाणी पिता माता धरत महत दिवस रात दोए दाई दाया खेलै सगल जगत।

नाहे। जीय जंत सब तेरा खेल, विजोग मिल विछड़िया संजोगी मेल। जिसनु तू जाना इह सोई जन जाने, हर गुण सद ही आख वखाने। जिन हर सेविया तिन सुख पाया, सहजे ही हर नाम समाया। तू आपे करता तेरा किया सब होए, तुद बिन दूजा अवर न कोए। तू कर कर वेखह जानह सोए, जन नानक गुरमुख प्रगट होए। आसा महला पहला, तित सरवरड़ पई ले निवासा। पाणी पावक तिन्ह किया, पंक जो मोह पग नहीं चालै। हम देखा तह डूबियले, मन एक न चेतस मूढ़ मना। हर बिसरत तेरे गुण गलिया, रहाओ ना हो जति सती नहीं पढ़िया। मूर्ख मुगधा जन्म पया, प्रणवत नानक तिन की सरणा। जिन तू नाही विसरिया, आसा महला पंजवा। भई परापत मानुख देहुरिया, गोबिंद मिलन की एह तेरी बरिया। अवर काज तेरै कितै न काम, मिल साध संगत भज केवल नाम। सरंजाम लाग पव जल तरन कै, जन्म वृथा जात रंग माया कै। रहाओ जप तप संज

एक ओंकार श्री वाहे गुरु जी की फतेह। पातशाही दसवीं कबयो बाच बेनती चौपाई। हमरी करो हाथ दै रक्षा, पूरन होय चित्त की इच्छा। तब चरणन मन रहे हमारा, अपना जान करो प्रतिपारा। हमरे दुष्ट सब तुम कावहो, आप हाथ दै मोहे बचावहो। सुखी बसे मोरो परवारा, सेवक सिख सब करतारा। मोर अच्छा निज कर दै करिए, सब बैरन कौ आज संघरिए। पूरन होए हमारी आशा, तोर भजन की रह प्यासा। तुम है शाड़ कोई अवर न त्याऊं, जो बार चाहाऊं सो तुम ते पाऊं। सेवक सिख हमारे तारी है, चौने चौने सत्र हमारे मारी है। आप हाथ दे मुझे उबरी है, मरण काल का त्रास निवरी है। हुजो सदा हमारे पच्छा, श्री अस तुझ जू करी अहो रक्षा। राख ले हो मोहे राखन हारे, साहेब संत सहाय प्यारे। दीन बंद दुष्टन के हंता, तुम हो पुरी चतर दस कंता। काल पाए ब्रह्मा बप तरा, काल पाए शिव जू अवतरा। काल पाए कर विसन प्रकाशा, सकल

महामूढ काशपेद न जानत। महादेव कौ कहत सदा सेव, निरंकार का चीनत नह पेव। आप आपनी बुद्ध है जेती, बरनत पिन पिन तहे तेती। तुमरा लखा न जाए पसारा, केह बिद सजा प्रथम संसारा। एक रूप अनूप सरूपा, रंक पयो राव कही पूपा। अंडज जेरज सेतज कीनी, ओत पुज खान बहोर रच दीनी। कहूं फूल राजा हुए बैठा, कहूं सिमट पयो संकर इकैठा। सिगरी सृष्टि दिखाए अचंपव, आदि जुगादि स्वरूप स्वयं भव। अब रक्षा मेरी तुम करो, सिख उबार असिख संगरो। दुष्ट जिते उठवते उत्पाता, सकल मलेश करो रण काता। जे अस तुझ तव सरनी परे, तिनके दुष्ट दुखित हुए मरे। पुरख जवन पग परे तिहारे, तिनके तुम संकट सब टारे। जो कल को एक बार ते ऐ है, ताके काल निकट नह ऐ है। रक्षा होए ताहे सब काला, दुष्ट अरिष्ट टरे तत्काला। कृपा दृष्ट तन जाहे निहरि हो, ताके ताप तनक मह हरि हो। रिद्ध सिद्ध कर्मो सब होई, दुष्ट शाह श्वै सकै न कोई। एक बार जिन तुम्हें संभारा, काल फास ते ताहे उबारा। जिन नार नाम तिहारो कहा, दार

सवैया पाई गहे जब ते तुमरे तब ते को आँख तरे नहीं आने ओ। राम रहीम पुराण कुरान अनेक कह मत एक न मान्यो। सिमृत शास्त्र वेद सब बहु भेद कह हम एक न जान्यो। श्री असपान कृपा तुमरी कर मैं ना कहे ओ सब तो हिब खान्यो। दोहरा

चित आवे, चित आवन का सदका सर्ब सुख होवै। जहां जहां खालसा जी साहिब तहां तहां रचिया रियायत देग तेग फतेह। बिरद की पैज पंथ की जीता श्री साहिब जी सहाय। खालसे जी के बोल बाले बोलो जी वाहिगुरु बोलो। जे सिखा नू सिखी दान केस दान रहत दान बबेक दान विसाह दान भरोसा दान दाना सिर दान नाम दान श्री अमृतसर साहिब जी दे दर्शन इशनान। चौंकियां झंडे बुंगे जुग जुग अटल धर्म का जयकार बोलो जी वाहिगुरु बोलो। जे सिखां दा मन नीमा मत उच्चे मत पत दा राखा आप वाहिगुरु। हे अकाल पुरख अपने पंथ दे सदा सहाई दतार जीओ श्री ननकाना साहिब अते होर गुरद्वारियां गुरधामां दे जिन्ना तो पंथ नूं वसोड़िया गया है। खुले दर्शन दीदार ते सेवा संभाल दा दान खालसा जी नूं बख्शो। हे नमानियां दे मान नतानियां दे तान नियोटियां दी ओटा धन धन श्री गुरु रामदास साहिब जीओ। आप जी दे पावन पवित्र स्थान सच खंड श्री हरिमंदर साहिब जी विखे धन धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जीओ महाराज। आप जी दे हजूर ਸਬਦ ਚੌਂਕੀ ਸੋ ਦਰ ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ। ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਮੁਆਫ ਕਰਨੀ ਸਿੱਖ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੁਣਦੇ ਸਰਬੱਤ ਲਾਹੇ ਬੰਦ ਹੋਵਨ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।

सतगुर बचन तुम्हारी निर्गुण निस्तारी। सतगुर बचन तुम्हारी निर्गुण निस्तारी। महाबिखादी दुष्ट अपवादी ते पुनीत संगारी। जन्म पवन्ते नरक पड़न्ते तिनके कुल उदारी। कोई ना जाने कोई ना माने से प्रगट हार द्वारी। कवन उपमा देओ कवन वडाई। नानक खिन खिन वारी। कवन उपमा देओ कवन बड़ाई। नानक खिन खिन वारी। कोटिन कोटान ज्ञान ज्ञान अवगाहन कै। कोटिन कोटान ध्यान ध्यान और तारही। कोटिन कोटान सिमरन सिमरन कर। कोटन कोटान उन्मान बारंबार ही। कोटन कोटान सिमरन सिमरन कर। कोटन कोटान उन्मान बारंबार ही। कोटन कोटान सुरत शब्द औदृष्ट कै। कोटन कोटान राग नाद चुनकार ही।

मेरा सतगुर रखवाला हुआ, तार कृपा प्रभ हाथ दे राखिया, हर गोविंद नवा निरोआ, रहाउ ताप गया प्रभ आप मिटाया, जन की लाज रखाई, साध संगत ते सब फल पाई, सत गुर कै बल जाई।

अन ठौर नांगी जह जाता खीर अधार बारक जब होता बिन खीरा रहन न जाय सार समाल माता मुख नीर तब ओह तृप्त

खीर आधार बारक जब होता, बिन खीरा रहन ना जाय। सार संभाल माता मुख नीरा, तब ओह तृप्त अघाई। हम बारिक पिता

अमृत शौर बिख बिख खाई माया मोह परम पै भूले सुत दारा स्यों प्रीत लगाई। एक उत्तम पंथ सुनियो गुर संगत तेह मिलंत जम त्रास मिटाई। एक अरदास पाठ कीरत की गुर रामदास राखह शरणाई। एक अरदास पाठ कीरत की गुर रामदास राखह शरणाई। सुकह टल गुर सेवियै अहनिस सहज सोभाए दर्शन परसै गुरु कै जन्म मरण दुख जाय। होवै सिफत खसम दी

गोरपुर राखे शरण सच्चे की ताके परमेश्वर आप हो रखवाला सात सहज सुख खिन में उपजे मान हुआ सदा सुखाला रहा हर हर नाम दियो दारू तेन सगला रोग बिदारू अपनी कृपा तारी तेन सगली बात सवारी।

बोलाया बोली तेरा तू साहिब गुणी गहेरा जप नानक नाम सच साखी आपने दास की पैज राखी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सिर मस्तक रखिया पार ब्रह्मं हस्तकाया रखिया परमेश्वर आत्म रखिया गोपाल स्वामी धन चरण रखिया जगदीश्वर सर्व रखिया गुरदयाल है पै दुख विनाशन है भगत वत्सल अनाथ नाथे शरण नानक पुरख अच्युत है। बिलावल महला पंजवा ताती वाओ न लगई पार ब्रह्म शरणाई चौगिरद हमारे रामकार दुख लगे न पाई सतगुर पूरा फेटिया जिन बणत बनाई राम नाम औखद दिया काले बलाई रहाओ राख लिए तन रखन हार सब व्याध मिटाई कहु नानक कृपा भई प्रभ भये सहाई सोहिला राग गौड़ी दीप की महला पहला एको अंकार सतगुर प्रसाद जय कार कीरत आखिए करते का हुए बिचारो तित कार गावो सोहिला सिवरिहो सृजनहारो तोम गावाओ मेरे निरपाओ का सोहिला हौ वारी जित सोहिले सदा सुख होए रहाओ नित नित जी अड़े संभालियन देखेगा देवनहार तेरा धन कीमत ना पवै ते सदा ते कवन सुमार संबत साह लिखिया मिल कर पावहु तेल देहो सज्जन असीसड़िया ज्यों होवै साहिब स्यों मेल कर कर एहो पहुँचा सदड़े नित पवन सदनहारा सिमरिया नानक सिध आवन राग आसा महला पहला शै कर शै गुर शै उपदेश गुर गुर एको वेस अनेक बाबा जय कर करते कीरत होए सो कर राख वडाई तोए रहाओ विसोए चसया घड़िया पहरा थी वारी माहो हो आ सूरज एको रोते अनेक नानक करते के केते वेस राग तनासरी महला पहला गगन मैथाल रावे चंद दीपक बने तारिका मंडल जनक मोती धूप मल्या नलो पवन चवरो करे सगल बानराए फूलंत ज्योति कैसी आरती होए पाव खंडना तेरी आरती अनहता शब्द वाजंत भेरी रहाओ सहस तव नैन नन नैन है तोहे कौ सहस मूरत नना एक तोही सहस पद बिमल नन एक पद गंध बिन सहस तव गंध इव चलत मोही सब मह ज्योत ज्योत है सोए तिस दै चानण सब मह चानण होए गुरसाखी ज्योत प्रगट होए जो तिस पावै सो आरती होए हार चरण कवल मकरंद लोभित मनो आन दिनो मोहे आही प्यासा
कृपा जल देहे नानक सारिंग कौ होए जाते तेरा नाई वासा। राग गौड़ी पूर्वी महला चौथा। काम क्रोध नगर बहु भरिया मिल साधु खंडल खंडा हे। पूर्व लिखत लिखे गुर पाया मन हर लेव मंडल मंडा हे। कर साधु अंजलि पुन वड्डा हे कर डंडौत पुन वड्डा हे। रहाओ साकत हर रस साधना जानिया तिन अंतर हो मैं कंडा हे। ज्यों ज्यों चल है चुभ है दुख पाव है जम काल सह है सिर डंडा हे। हर जन हर हर नाम समाणे दुख जन्म मरण पव खंडा हे। अविनाशी पुरख पाया परमेसर बहु सोभ खंड ब्रह्मंडा हे। हम गरीब मसकीन प्रभ तेरे हर राख राख वड वड्डा हे। जन नानक नाम आधार टेक है हर नामे ही सुख मंडा हे। राग गौड़ी पूर्वी महला पंजवा। करो बेनंती सुनो मेरे मीता संत टहल की बेला। इहां खाट चलो हर लाहा आगे बसन सोहेला। औद कट दिन सरैणारे मन गोर मिल काज सवारे। रहाओ एहो संसार विकार संसे मह तरयो ब्रह्म ज्ञानी जिस हे जगाए पिया वै एहो रस अकथ कथा तन जानी। जा कौ आए सोई बेहज हो हर गुर ते मन है बसेरा। निज घर महल पावहु सुख सहजे बहोर ना होए गो फेरा। अंतर जामी पुरख बिदाते

मांगै मोकौ कर संतन की तोर। अंतर जामी पुरख विदाते सरदा मन की पूर। नानक दास है सुख मांगै मोकौ कर संतन की तो।

0: कोट जन्म के दुख गवायो, जो चाहत सोई मन पायो, कर कृपा हर नाम दिवायो, सर्ब सुख हर नाम बढ़ाई, गुर प्रसाद नानक मत पाई।
1: श्लोक पवन गुरु पाणी पिता माता तरत महत दिवस रात दोए, दाई दया आखे ला सगल जगत चंगे।

0: जग जीवन दाता पाया।
1: पौड़ी बिन सतगुर के नै ना पायो, बिन सतगुर के नै ना पाया। सतगुर विच आप रखियो अनकर प्रगटाक सुनाया, सतगुर मिले सदा मुक्त है जिन विचों मोह चुकाया। उत्तम यह विचार है जिन सच्चे सो चितलाया, जग जीवन दाता पाया, जग जीवन दाता पाया।

पौड़ी तोर कर्म जना को तुद पाया ततनी खसम त्याया। एना जनता का बस किचना तुद वेकी जगत पाया। एक नानो तू मेले का पो तुद खुआया। गुर कृपा ते जानिया जिथे तुदा बुझाया। सहजी सस माया सहजी सस माया।

0: कुंभे पदा जल रह, जल बिन कुंभ ना होए, ज्ञान का पदा मन रह, गुर बिन ज्ञान ना होए।
1: पौड़ी पड़िया होवे गुनहगार तो मी साधन मारी है, जेहा काले कालना तिवे उन्ना उपचारी है, ऐसी कला ना खेटी है जिधर के गया हारी है। पढ़िया ते उमिया विचार के विचारी है, मुहे चले सो के मारी, मुहे चले सो के मारी।

0: माया मत कहाँ लो गारो, छतर न पतर न चौर न चावर, बहती जात रिदे ना विचारो, रथ न सुन गस सिंघासन, शिन में त्याग नांग सिधारो, सूर न वीर न मीर न खानम, संग न को दृष्ट निहारो, कोट न ओट न कोस न छोटा, करत विकार दो कर चारो, मित्र न पुत्र कतर साजन साख, हे भगवंत कृपा कर तारो, श्री पतनाथ शरण नानक जन, हे भगवंत कृपा कर तारो।
1: प्राण मान दान मग जोहन, हित चीत दे लेले पारी, साजन सैन मीत सुत पाई, ताहू ते लै रखी निरारे, पावन पावन कूरक मावन, एह बिद करत औतंजारी, कर्म धर्म संजम सुपचनेमा, चंचल संग सगल विदहारे, पस पंखे बिरख स्थावर, बहु बिद जोन परम्यो अत पारी, खिन पाव चसा नामनि सिमरऊ, दीना नाथ प्राण पसारी, खान पान मीठस भोजन, अंत की बार होत कत खारी, नानक संत चरण संग उदरे, और माया मगन चले सब डारी।
2: ब्रह्मा दिक शिव संत मुनीसर, रसक रसक ठाकुर गुण गावत, इंदर मनिंदर खोज ते गोरख, तरन गगन आवत पुंतावत, सिद्ध मनुख्य देव अर दानव, एक तिल ताको मर्म न पावत, प्रिय प्रप्रीत प्रेम रस भक्ति, हर जन ताके दर्श समावत, तिसे त्याग आन को जाचा, मुख दंत रसन सगल कस जावत, रे मन मूर सिमर सुख दाता, नानक दास तुझे समझावत।

सब आकाश नामावत बिस्टा अस्त क्रिम उदर भरयो है दह दिस ताए महाबिखिया को पर तन छीन अज्ञान हरयो है जोबन बीत जरा रो।

0: प्रेम भगत उधर से नानक कर कृपा कर कृपा संत आप करियो है।
1: गुण समो फल सगल मनोर पूर्ण होई आस हमारी। औखद मंत्र तंत्र पर दुख हर सर्व रो खंडन गुणकारी। काम क्रोध मद मत सर तृष्णा बिनस जाहे हर नाम उच्चारी। इशनान दान तापन सुच किरया चरण कमल हृदय प्रभतारी। साजन मीत सदा हर बंदप जीतान प्रभ प्राण अदारी। ओट गही स्वामी समरथ नानक दास सदा बलहारी।
2: आवत कट्यो ना जात प्रेम रस चरण कमल संग। दामन बंध्यो ना जात विदे मन दर्श मग। पावक जर्यो ना जात रहो जन तूरे लग। नीर ना साक्ष बोर चले हर पंथ पग। नानक रोग दोख अग मोह सिदे हर नाम खग।
3: उद्यम कर लगे पोपति बिछड़े अनेक शास्त्र बोखटुआ। पसम लगाए तीरथ पोपम ते सुखम दे बंदे बहुजटुआ। बिन हर पयन सगल दुख पावत जो प्रेम बढ़ाए सूत के हटुआ। पूजा चक्र करत सोमपाका अनेक पात थाटे कर थटुआ।
4: गुण गावे पायाल भगत ना गाद पयंगम। महादेव गुण रवे सदा जोगी जत जंगम। गुण गावे मुन ब्यास जिन वेद व्याकरण विचारे। ब्रह्मा गुण उच्चर जिन हुकम सब सृष्ट सवारी। ब्रह्मांड खंड पूरन

0: कोस ना छोटा, करत बिकार दहु कर चारो, मित्र ना पुत्र कलतर साजन सख, उल्टत जात बिरख की शारो, दीन दयाल पुरख प्रभ पूर्ण, छिन छिन सिमरो अगम पारो, श्रीपत नाथ शरण नानक जन, हे भगवंत कृपा कर तारो।
1: एक मन पुरख त्याय बरदाता, संत सहार।

अहनस सहज दर्शन परसिय गुरु के जन्म मरण दुख होए सिफत खुसमनी नूर पुरुषों।

पुस्तक संध्या बादंग सिल पूर्स बगल समादंग मुख झूठ बपोखंग सारंग त्रिपाल तिहाल बचारंग गल माला तिलक ललाटंग दे धोती बसर कपाटंग जे जानस ब्रह्मंग करमंग सफो कट निश्चो करमंग कहो नानक नेचो त्यावे बिन सतगुर वाट न पावे बोड़े कपड़ रूप सुहा।

बोलो जी वाहे गुरु। एक ओंकार वाहे गुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय वार। श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं। प्रथम भगवती सिमरकै गुरु नानक लई त्याए। फिर अंगद गुर ते अमरदास। राम दस हुई सहाय अर्जन हर गोबिंद न। सिमरो श्री हर राय। श्री हर कृष्ण ते आईऐ जिस डिठे सब दुख जाए। तेग बहादुर सिमरिऐ घर नौ निधि आवै ताए। सब थाई होए सहाय दसवें पातशाह। श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी। सब थाई होए सहाय दसां पातशाहियां दी जोत। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ। दीदार दा ध्यान धर के बोलो जी वाहे गुरु। बोलो जी पंजां प्यारियां चौहां साहिब जादियां। चालियां मुक्तियां हठियां जपियां तपियां। जिन्हां नाम जपिया वंड छकिया। देग चलाई तेग वाही देख के अंडठ कीता। तिन्हां प्यारियां सचियारियां दी कमाई दा ध्यान धर के।